0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. سچ ہے غیر کا

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: जितां आराईंदी दांदली जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे कश्मीर जा मसला हल कंदासीं हमांगी में आलमन जो किरदार सारा जो बाबत मसला जल्द हल कया वञनि
1: हमने सिर्फ पोस्टमार्टम से पहले उनकी जो हालत देखी थी हम उससे उनसे कह रहे थे कि ये उनका कत्ल किया गया है और बहुत तकलीफ से बात करके इन्वेस्टिगेट नहीं है। हमने जिस हालत में बच्चे को देखा हम बस ऊपर से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है ये मर्डर है इसको प्लीज इन्वेस्टिगेट कर दें और आज भी हम यही कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेट क्या किया हमें कुछ नहीं पता।
2: कराची के नौजवान जिस्म ते तशद्दुद

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
3: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
4: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: yeah!

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्कीया विच में मका मुआदो थियण जी खुशीअ में पाकिस्तान में जश्न। इस्लामाबाद खे टिन्ही मुल्कनि जे झंडनि सां सिंगारियो वियो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल समेत टिन्ही मुल्कनि जे सरबराहनि जूं तस्वीरूं बि लॻल। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ बि तारीख़ी मुआदे ते सयूं करण बाद ॾेह पहुची वियो। पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्कीया जे सरबराहनि तारीख़ी दिफ़ाई मुआदे ते सयूं कयूं हुयूं। कानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबब टे बार फौत, सत बेहोश। गुलज़ार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबब ॾह भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान पंज वरनि जो ज़ैन कुरेशी ऐं टिन सालनि जो गुलज़ेब ऐं निगरी मुस्कान फौत थिया। गुलज़ार समेत ॿिया इस्पताल में इलाज हेठि।

अगवाणी वेझो घर में फुर खिलाफ गोठाणन जो इंडस हाईवे ते धरणो गोठ सुबह सादिक खोसो में घर में चोरी खिलाफ लाशारी बिरादरी के मानून इंडस हाईवे बंद कर छो गोठाणन जो चवण है हथियारबंद घर में गिड़ी गर्भातन के जर्गमाल कर बाद तशद कर मोटरसाइकिल ए बो सामान भी फुरे वाया फुर थियल सामान वापस कराया वे।

0: ऐं यमन जे सरकारी फ़ौज हूसिन ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करे छॾियो, पर ॾेखाबरी इदारे मूजिबि मारब वारे इलाइक़े में हूसी तनज़ीम इंसारुल्लाह ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई। हूसी बाग़नि जे केतिरा ई ठिकाणा तबाह थी विया। यमन जे बचाउ खाते जो चवणु आहे त हूसी बाग़नि यमन जे मैशियत खे तबाह करे मुल्क में फिरके वारियत खे हथी ॾिनी। संदन हर अगराई जो मोटो जवाब ॾिनो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
4: जीए एफएम 91.6।

0: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती तब जमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहती हैं अम्मी, मैं मनोज हूँ इस जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे,
1: या मेरे दिल का धड़कना दे दे। देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: कहती हैं अपनी, मैं मनोज हूँ की जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
5: वादिय मेहरान सिंध की एक और पहचान
4: GAFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे की करो लई।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yuya Granular. Mithiye jo manvat.
7: तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फैदान है पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के दिफाई मुआहदे जो हदफ ईरान न है। ही नेटो मुआहदे जड़ो है। जेस तीन मेंबर मुल्क से हमलो न थी ईरान समेत कें भी मुल्क खिलाफ कार्रवाई न थी। नेटो मुआहदे की शिक 5 तहत मका मुआहदे में एक बे की दिफा की जमानत डिनी वही है। नेटो जिया टई मुल्क एक वजारती कमेटी कायम कंदा जो सेक्रेटरियट सऊदी अरब में होंद। टेक्निकल मामला हल थे बाद मिस्र भी दिफाई मुआहदे में शामिल थी सके तो।

मुल्क के मुख्तलिफ इलाइकन में बरसात जो इम्कान अज पंजाब बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मथा इन इलाकन कश्मीर के कुछ इलाकन में बरसात पे सके थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क के वन दरियान में पानी के वहक जाहिर कर छो। तंगवाणी वेझो घर में फुर खिलाफ़ गोठान जो इंडस हाईवे से धरणो गोठ सादिक कोसो में घर में चोरी खिलाफ़ लाशारी बिरादरी के मानून इंडस हाईवे बंद कर छो। गोठान चवण हो हथियारबंद घर में दाखिल थी घरबातन के यरगमाल कर बाद तशद्दुद कयो। मोटरसाइकिल बो सामान भी फुरे वया फुर थियल सामान वापस कराए वे। घोटकी भरसा गुजरियल ढी कतल थियल बिन भाइरन की तदफीन पुलिस चढ़ायूं। अशरफ अली शाबान घोटो की जनाज नमाज गोठ गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वही। हमले में जख्मी थियल बिन भाइरन फयाज ए वसीम घोटो जो सखर अस्पताल में इलाज हलंदड़। जवाबदारन की गिरफ्तारी लाए पुलिस के कच्चे के गोठन में चढ़ायूं। जवाबदार घर खाली कर फरार। कानपुर भरसा जहरीलो खाधो खाने सबब फौत थियल टिन बार तदफीन। माहौल सोगवार मदनी पाड़े में फौत थियल गुलजे मुस्कान जैन कुरेशी जो मड़ खजन वक्त रोजराड़ो मची वो। फौती बार जनाज नमाज में सियासी समाज अगवान शहर की शिरकत। टिन्हीं मासूम बार मड़ समय आलन अखियन से मिटी माहौले।

ऐं फैज़गंज मां हिकु हफ़्ते खां गुम थियल जो पतो न पियो। वारसन पारां अगवा जो शक। वारसन जो चवण आहे त सत वारनि जी काजल खे गुम थींदे हफ़्तो थी वियो। शक आहे त बारडीअ खे अगवा कयो वियो आहे। एस एस पी खैरपुर ऐं डीआईजी सखर नोटिस वठी बारडी बाज़ियाब कराई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11:15 AM.
2: This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾे नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़ सिंध

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिटीअ जो मान वधाए।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 11:45 AM. This time track is brought to you by.
4: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुला, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharosa.
4: Feel na thiyo ahe.
3: Seka.
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Julia Granular.
8: मेंबर मुल्क ते हमलो न थींदो, ईरान समेत कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न थींदी। नेटो मुआदे जे शिक पंज तहत मका मुआदे में हिक ॿिए जी दिफ़ा जी ज़मानत ॾिनी वई आहे। नेटो जी यहां टे ई मुल्क हिकु वज़ारती कमेटी क़ाइमु कंदा, जंहिंजो सेक्रेटरेट सऊदी अरब में हूंदो। टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र बि दिफ़ाई मुआदे में शामिल थी सघे थो।

फैज़गंज में एक हफ्तो अग गुम थियल मासूम निगरी जो पतो न पियो। वारसन पारां अगवा जो शक जाहिर। वारसन जो चवण हो तो सत वरन की काजुल के गुम थींदे हफ्तो थी वियो। बाली के अगवा कयो वियो आहे। नोटिस वठी बाज़ियाब कराए वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: अपना शहर अपना घर।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते हैं।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज. जीए FM की आवाज.
3: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
8: तहरान जा छह मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाए हुर्मज न खोलियो वेंदो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल बाकिर ज़ुल्कदर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण, ईरानी बंदरगाहुनि जी नाकाबंदी ख़त्म करण, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करण शामिल आहे। सफारतकारी अमरीका के ईरान सां मफाहमत ते मजबूर कयो।

ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे तहत अमरीका खे आबनाए हुरमज़ बाबति ईरान ऐं ओमान जी गडि॒यल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे। हा, भञकड़ीअ जी सूरत में ईरान अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईराननि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे। ॾोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवियो तब्दील न थियो आहे। ईरान बि तयारु आहे। मुल्क जे

अॼु वारो फ़ैसिलो कयो। बाज़ियाबु करायो वञे।

मुज़ारिन पारां अॻूणे SHO हिदायतुल्ला निंदवाणी ऐं ॿियनि इंडस हाईवे ते ओवरहेड साइन बोर्ड हादसनि जो सबब बणियल मंज़ूराबाद में रहवासियुनि जो धरणो। ॻोठाणनि इंडस हाईवे ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो, ट्रैफिक मुअतल। रहवासियुनि जो चवणु हो त ओवरहेड साइन बोर्ड मौत जो राकास बणिजी वियो आहे। गाॾियुनि जे छितनि ते वेठल मुसाफ़िर फौत थी वञनि था। 3 महीननि दौरान 3 मुसाफ़िर ओवरहेड साइन बोर्ड सां टकराइजी हयाती विञाए वेठा। अख़्तियारियूं नोटिस वठी मौत जो राकास बणियल ओवरहेड साइन बोर्ड हटाए इंसानी जानियूं बचाइनि।

टंगवाणी वेझो घर मां फुरख खिलाफ गोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। गोठ सादिक लाशारी में घर मां चोरी खिलाफ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि पारां इहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। गोठाणनि जो चवणो हो त हथियारबंद घर में दाख़िल थी घरवातियुनि खे यरगमाल बणाए फुलुट करण बाद फरार थी विया। कड़ी खैरो में वधंदड़ बदमनी खिलाफ रहवासी सरापा एहतजाज बणियल। सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो। चोरी ऐं फुर्जी वधंदड़ वारदातनि खिलाफ शहरनि सहाफ़ियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। रहवासियुनि जो चवणो हो त सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा जमालीअ खां फोड़ थियल मोटरसाइकिल समेत वारदातुनि जो नोटिस वरितो वञे। बदमनी सबबि परेशान आहियूं। शहर अंदरि वधंदड़ बदमनी ते कंट्रोल कयो वञे। घोटकी भर सां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल ॿिनि भाइरनि जी आलिन अखियुनि सां तदफ़ीन। पुलिस जूं चढ़ायूं। अशरफ ऐं शाबान घोटो जी जनाज़े निमाज़ ॻोठ गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वई। हमले में ज़ख़्मी थियल ॿिनि भाइरनि फयाज़ ऐं वसीम घोटो जो इलाज हलंदड़। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जे कचे जे ॻोठनि में चढ़ायूं। ड्रोन कैमरा ज़रिए बि कार्रवाई। जवाबदार घर खाली करे फरार। ऐं खानपुर भरिसां ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि फौत थियल टिनि ॿारनि जी तदफ़ीन। माहौल सोगवार। मदनी पाड़े में फौत थियल गुलज़ेब मुस्कान ऐं ज़ैन कुरेशीअ जा मड़ खॼण वक़्त घर में कोहराम। फौती ॿारनि जी जनाज़ नमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरनि जी शिरकत।

0: ट्रेंड के हो तो आवाज भी सिंट की है। GFM 88 नेटवर्क सिंट की आवाज।
1: It's 1:15 PM.
2: This time check is brought to you by
0: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matiari, FM 91.6, Sindh Jo Awaaz.
4: O pita ja pitai, pita te vasai noor mujo to.
3: Sindh Jo Awaaz, budhanda raho.
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना

अच्छा जी ए लाड़काना एफ एम 88.8 हमारा पेज है जनाब, और जी ए लाड़काना एफ एम 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको ना आराम से हमारा पेज मिल जाता है। आई पेज के ऊपर वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। बिल्कुल जी, जितना ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं उतना ज्यादा प्रोग्राम में मजा आ जाता है। तो जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए कहाँ कहाँ से आप लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन का इस्तेमाल आप करेंगे अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स ना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। और इसी के साथ साथ आप जरा ऐसा किया करें कि पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। अच्छा, ये आदिल हमारे साथ मौजूद है। आदिल कहती है अस्सलाम वालेकुम, लिखने की कुछ लोग सिर्फ बोलना जानते हैं जबकि कुछ लोग खामोश रहकर भी जिंदगी के मुश्किल तरीन इम्तिहान जीत लेते हैं। यही सबसे हैं जो वक्त गुजरने के साथ अपनी अजमत खुद साबित कर देते हैं। ओके जी, बहुत बेहतरीन। और उसके अलावा आपने गाने की फरमाइश कर दी, ठीक है जी। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहे प्यारे भाई जान, खुश आमदीद कहा जाता है आपको। और हैप्पी आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम हैप्पी। केती माय फेवरेट आरजे, क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत कैसी है, वेलकम टू शो। आपको भी वेलकम टू शो कहा जाता है। अली रजा हमें सुन रहे हैं, अली रजा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, बहुत शुक्रिया अली रजा भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। हिरातुल्ला कहते हैं हेलो अच गया सोने प्रोग्राम में बोले, ये तो मेरा मतलब था प्यारे प्रोग्राम में, हाँ ना ऐसा बोलना था। अच्छा, उसके अलावा बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर अभी तक आप सिर्फ सोच ही रहे हैं। सकरन से वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, सलाम जी, प्रोग्राम नाइस है और क्या तारीफ करूं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपका गाना आपको सुना दिया जाएगा। और आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। अनवर भाई कहते हैं सलाम वालेकुम, अदी शायरी हाजिर है आपके नाम, सदा आबाद रहे तेरी बातों का गुलिस्तान, तेरी आवाज में जलते हैं तेरा लहजा है कि जैसे शाम का कोई फसून, बोलती है तो बिखरते सो गुलाब, आवाज में मोहब्बत का एक प्यारा सा सफर, सदरा तेरे लहजे का जा सर, सुनते हैं जो तुझको वो सुनते ही रहे, तो खुशबू की तरह बिखरे शामो सहर, तेरी बातों में उतरती है रोशनी की किरण, तेरा अंदाज शायस्ता तेरे हरफों सखन, जियो तो तेरे सहर, तेरा हर लम्हा रहे जैसे कोई नया चमन, वाह साई वाह ये तो। अलावा अशफाक खोड़ो हमारे साथ, अशफाक खोड़ो मौला अली सलामत है, वालेकुम असलाम, तमाम की विचारों का भली करी आया, शादी आ चुकी है, वालेकुम असलाम, हो फाइन ये आप बताएं कैसी हैं। मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अली रजा भाई आपका गाना लगा दें, सबर करें जरा। और हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे काफी दिन हो गए हैं ये वाला सॉन्ग नहीं चलाया, चलाते हैं जी, आज आपकी फरमाइश भी लगा दी जाएगी। और अशफाक आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू। मुझे जरा ये बताइए आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों का ये जो थोड़ा माइंड सेट है ना कि भाई क्रीमें तो सिर्फ खवातीन लगाती हैं, क्रीम लिए तैयार हुई हैं, तो ऐसा कोई सी नहीं है, ऐसा वाला सनी आप लोगों के लिए बहुत सारे सोप मिल रहा है, आप सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, को बस सिलेक्ट करना होगा कि आप इस्तेमाल करना है के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आप लोग अवेलेबल कर सकते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर, ताकि हमें भी आसानी हो जाए। तो जल्दी जल्दी से आप जो है मुझे बताते जाइए कौन सा प्रोडक्ट आप के जब पहले आए तो कैसे पता चला होगा कि भाईजान आज संडे है बताइए जल्दी। वालेकुम अस्सलाम चाचा खालिद के, हेलो सिद्रा यू हो, आप बताए चाचा के प्यारे वालेकुम के, सिद्रा आई बिजी थी, आज शो में शामिल हो गई थी मोमना। और उसके अलावा मोमना बताएं आप मुझे कहां से सुनना किया जाए ना, अरे उनका अलावा सादिया तमाम ससगर मौजूद है, थैंक यू, वो साथ आ चुके हैं जी प्रोग्राम में। आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और ऐसे ही प्रोग्राम में जो इनावर शामिल प्रोग्राम होते जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आ चुका है जी टाइम के लिया जाए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहे, हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी तीन बजे तक, आप जानते मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी, बिल्कुल भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, तो मौजूद रहिएगा और सुनते रहिएगा। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी।

0: रेडियंट स्पार्कलिंग और दे
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो उधर रहो
2: इट्स 1:30 पीएम दिस टाइम चेक

0: brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, एलोवेरा एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: 5 डे के एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.2 हर पहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: लोशन अवेलेबल है, उसके अलावा व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशंस अवेलेबल है, जो कि मुख्तलिफ

मिल रहा है। आपको क्रीम ट्यूब भी आपके लिए अवेलेबल है। ये तमाम प्रोडक्ट्स कैसे आया होगा, तो कैसे पता चला होगा कि आज संडे है, क्योंकि दिनों के नाम भी नहीं होते थे, ऐसे पता भी नहीं होता था लोगों को। ऐसे जो लोग बोल रहे ना कि बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे, छुट्टी थी बच्चों की, भैया

लेकिन आप नहीं मिलते तो जो नंबर आपको बताया उसके ऊपर रहा कीजिएगा और आप भी इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, व्हाइट एश फेस वॉश एंड व्हाइट एश ब्यूटी सोप ताकि आपको भी एहसास हो के वाले प्रोडक्ट्स। ओके जनाब, तो यहाँ पर गाने भी आप लोगों को सुनाए जाएंगे, गाने भी हमारी लिस्ट में मौजूद हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वाली बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और उसके अलावा पहले हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, आपके मैसेजेस भी हैं उनकी जाने भी आते हैं। आप ऐसा कीजिए, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए।

ओके जनाब, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अल्लाह रखे मेमन भाई और मेरे बेटे हैं खुर्शीद अली सनाउल्लाह अताउल्लाह अली डिनो अली शेर और मोहम्मद हसन मेमन और क्यूट बेबी फातिमा बतूल भी आपके साथ हैं। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को वेलकम कहा जाता है। अल्लाह रखे मेमन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और मकसूद मला हमारे साथ है। गुड आफ्टरनून सिद्रा मुस्कान। डी स्किन क्रीम बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। यकीन करो अब तो हमें कोई बहुत बढ़िया, आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और इसी के साथ साथ आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा। रसूल अब्बासी आबद हुसैन शम्बानी भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक मुझे सैटरडे ने पहले ही बता दिया था कि कल संडे आने वाला है, तैयार रहना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चाचा खालिद तमाम मौजूद है पैनल ते, बिल्कुल तमाम जी पसंद जो गानो हलायो वेंदो। मकसूद मल्हा कहते हैं जवाब, जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल गए होंगे तो वो नहीं गए होंगे तो पता चल गया होगा आगे संडे में बच्चे कैसे जाएंगे, वो तो बहुत पहले की बात है ना, स्कूल भी नहीं बने होंगे तब मुझे ये लगता है। तो जब पहली बार संडे आया था तो कैसे पता चला होगा। अरे साहिमा मीर हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम की थी माशाल्लाह सिद्रो, एक शो और करती हो वो भी शाम को, गुड गुड। वैसे वो शो कैसा होता है, क्या होता है उस शो में? 5 बजे आई एम फुल बिजी ऑन ड्यूटी, लेकिन वो शो होता भी जस्ट लाड़काना में है तो आना पड़ेगा आपके सिटी। जी बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए लाड़काना में आप घर ले लें ताकि आप लोगों को हमारे शो सुनने में आसानी हो जाए। वैसे वो भी स्पॉन्सर्ड शो है और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा खालिद कहते हैं संडे फर्स्ट टाइम जब आया था तो हिस्टोलॉजी में उसको योर टॉपिक आंसर ओके। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है साइमा कहती है जी अल्लाह करे तुम जल्दी पुप्पो बन जाओ, वो भी रियल वाली। बाकी ड्रामा में तो बुआ को बुरा दिखाते हैं, ऐसा होता नहीं, हम जान देते हैं सुकून वाली। अच्छा हाँ नहीं, हम पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है अपनी पुप्पियों को तो बस एक दो ही अच्छी है, बाकी तो अल्लाह पना रहे। अच्छा ये हमारे साथ ही आरजे सिद्रा जी सलाम कबूल करे मोहम्मद शरीफ कुंभ विलेज नबी बख्श खान असा से गुड मौजूद है। ओके जी भाजू मोहब्बतान प्रोग्राम बुधो पया मुख्य डियो हाल अवाल तमाजे गोठन में तमाजे सिटीज में वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलन था कौन। ओके जी क्या बात है, घोटे जी शादी कराई सी। मत आना मनो आने वाली फायजा वाली आई तो ढो भलो गानो गाई दी।

वो पाए वाइट एज जो फेस वॉश आए आई वाइट एज जी लवली क्रीम भी अथव बाबा बुधायूं था बुधायूं था इन जो छा कमाल आए पर थोड़ो खिल त सही अस्सलाम हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और बाजी को आर स्वीट सिस्टर्स को कहती आई एम नाराज व्हाई यू नाराज व्हाई अरे भाई मान जाओ अब वासा भाई हमें सुन रहे हैं थैंक यू वासा भाई मदली कहती है कि मैं भी आ गई वेलकम तो हाँ जी वेलकम किया जाता है हमारी प्यारी निदड़ी को और मैं ठीक हूँ तुम बताओ चाचा खालिद कहते हैं कि मोहब्बत में हर्फ बा हर्फ मुझे मांगना नहीं आता मैंने अदाबे दुआ से बहुत आगे तुझे चाहा वाह वाह

कहोगे कि मिरपुर खास में प्रोग्राम नहीं सही चल रहा है, भाई मिरपुर खास वालों सही से प्रोग्राम कनेक्ट किया करो, बहुत बुरी बात होती है। अच्छा रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, रशीद खोसो हैदराबाद से आप हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको वेलकम कहा जाता है। जाम तालिब सोलंगी हमारे साथ है, मोरो का तमाम से प्रोग्राम बुधो पया शमन जो गाना बिल्कुल तमाम बुधरायू था, थैंक यू तमाम से गड़ा है। अच्छा ये मीर एजाज नूनारी भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, नकर बाबा नकर। अच्छा प्यारी मोमना कहती चापे क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है ना, तो पता चल जाता होगा कि संडे है, और मैं मोरो से आपका शो सुन रही हूँ, क्या बात है मोमना, आपको वेलकम कहा जाता है, थैंक यू आप हमारे साथ हैं। अच्छा वासु भाई कहते हैं टॉपिक के ऊपर ना आपने जो जवाब दिया है वो बहुत ही वखरा सा जवाब है, सो थैंक यू सो मच। अच्छा सादिया कहती है यहाँ पे ये पोइट्री है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द निगाहे जमाना है, वाह वाह वाह वाह, दर्दे दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं। हाँ बाबा खिलो खिलो छो तमा मूड खराब करे वेठा आयो, उनखा अलावा अगर तमा मूड खराब ही न कियो सोना सोना थियो, आई सोना सोना थियो सा गडो गड तमा वट वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद आहे, प्रोडक्ट्स में तमा के प्रोडक्ट्स आन हु सब तमा जे स्किन जे मुताबिक तैयार ने, तो वाइट एज लवली क्रीम एकडो एडो फार्मूलो आहे, एकडी एडी फेयरनेस क्रीम आहे। अच्छा फेयरनेस क्रीम जो जने में जिक्र ही ना त या गाल तमा के बिल्कुल खबर हुंदी, तो फेयरनेस क्रीम जे का हुंदी वो सबनी मानो चलाए हुंदी आहे, जी सा नाइट क्रीम हुंदी आ तो नाइट क्रीम के टीनेजर्स मानो लगाए सगन था, एजेड लगाए सगन था, पर बचड़ा बार न था लगाए सगन, तो बिल्कुल अगर ऐसा फेयरनेस क्रीम जो जिक्र कयूं तो फेयरनेस क्रीम एक वो प्रोडक्ट हुंदा जेके तमा घर जा सब भाती लगाए सगो था, यानी कि बचड़ा भी लगाईंदा बार भी लगाईंदा आई कुराड़ा मायूं जवान हर को लगाईंदो, तो वाइट एज लवली क्रीम एकड़ो वो प्रोडक्ट आहे जेको न सिर्फ इन लाइ तैयार कयो आहे त बाबा तमा के सिर्फ फेयरनेस मिले तमा के सिर्फ निखार मिले, बल्कि वाइट एज वारन एतरो तमा जे स्किन जो ख्याल कयो आहे, तो वाइट एज लवली क्रीम जेका ट्री विटामिन जे कैप्सूल सा तैयार थियल आहे, उनखा अलावा जेको आहे जे अंदर सनस्क्रीन भी एड कई वई आहे, सनस्क्रीन एड करण जो मतलब ऐं मकसद इहो आहे त तव्हां जी स्किन ते जेका खूबसूरती आहे उहा त तव्हां खे मिले, पर तव्हां जी स्किन ते जेको नुक़सान पवंदो आहे न सिज जे असर जी वजह सां, सिज जा जेके किरणा हूंदा आहिनि तव्हां जी स्किन ते नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि, त उन्हनि खां तव्हां जी स्किन खे जेको आहे उहो हिफ़ाज़त, वाइट एज लवली तव्हां ऑफिस वञो था वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल खे खूबसूरती बि ओ हीअं मिली, त बाबा तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, ॻाल्हि अथव सिधी ठीकु आहे, ट्यूब बि आहे जेको तव्हां एक्नी खे ख़तम करण लाइ लॻाए सघो था, पर न सिर्फ़ एक्नी, तव्हां जे चहिरे ते एक्नी आहे, एक्नी जा निशान आहिनि तव्हां जे चहिरे ते, कोई चोट जो निशान आहे, को सड़न जो निशान आहे, को कट जो निशान आहे, केॾा बि पुराणा केॾा बि ज़िदी निशान अगरि तव्हां जी स्किन ते मौजूदु आहिनि त बसि तव्हां सिर्फ़ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल कयो, ऐं इस्तेमाल करण खां फौरन बाद ई तव्हां खे अंदाज़ो लॻजी वेंदो त बाबा असां वाके ॾाढी भली शइ इस्तेमाल कयूं पिया, सो डॉक्टर पिंपल

0: बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं वाइट एच एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एच ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, कंजूसियां नहीं बनती यहां पर। अशफाक उड़ो कहते हैं टॉपिक संडे मोकल जो डे आए इन करे खबर पवे थी ता जो संडे आए। अरे बाबा पहरे संडे की गाल हले पई थे। दर्द दिल कहती है मैं और अलीजा शो सुन रही है, एंजॉय अमेजिंग शो एंड ब्यूटीफुल वॉइस माई जानी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच प्यारी दर्द दिल अलीजा। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मैं बुरा नहीं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो बदला बदला सा लगता हूँ ना, ये अपनों की मेहरबानी है। गैर तो गैर है, गैरों से क्या गिला, लेकिन अपने तो अपने हैं, अपनों से क्या मिला। आईली सब फटिया बिठाए। अच्छा सादिया कहती हैं टॉपिक संडे का, अच्छा पता नहीं क्या कह रही है। ओके जी हैप्पी कहती है आरजे, मुझे तो पता नहीं पहले संडे आया था तो कैसे पता चला था। अखलाक भाई हमें सुन रहे हैं, नाइस शो, थैंक यू अखलाक भाई। और प्यारी मोमना कहती है फायजा का गाना, फायजा जो गानो हाने बुधो सी सोनी, थैंक यू तमाम से सगड आयो। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा, आज स्मार्ट बिस्तर में या तबियत थोड़ो नाजुक आ है, नाजुक या नासाज तबियत जो ख्याल रखो बाबा, तबियत जो ख्याल रखो। चवंदा आहिनि जीउ ख़ुशि त जहान ख़ुशि। अच्छा जल्दी जल्दी ठीक थी वञो, डॉक्टर खे ॾेखारियो, दवा बवा खाओ, गोरियूं खाओ, गोरियूं। अच्छा हुन खां अलावा तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल बि कजो, सही आहे। अच्छा सादिया कहती आप ही आज किसकी शादी करवा रही, घोट जी शादी कराई सी, घोट जी। आदल कहते हैं जवाब पहली बार जब संडे आया था तो पत्ता ऐसे चला, बैंक बंद थी। अच्छा माने यहाँ गाल हुई, सही सही। ओके सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सो डिंगोवा बाबा गोट तुझो जो उनमें वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन के जल्दी तमाम अवेलेबल करायो, खूबसूरती जो ख्याल रखो, ऐं सोना सोना थी वञो। टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक, उन खां पोइ जल्दी मोटी तव्हां ॾिठो था गाॾी में वञो, हिते वेठा हुजो, मां उहो ई वञी उहो मोटा थी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam, fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yuya Granular.
6: Mitiye jo maan vadhai.
4: Khubsurti ka asal raaz sirf डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार।

0: दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी, कार्रवाई में 15 खारजी दहशतगर्द मार्च गया। सिक्योरिटी जरिए मुजिब सिक्योरिटी फोर्सेज मस्तोंग, बोलान, वाशक, आवरान, सिब्बी, खुस्तार, हरनाई ए नोशकी में कार्रवाई दौरान 15 दहशतगर्द के मारे छो, कब्जे में हथियार ए बारूदी मवाद भी हथ। सिक्योरिटी फोर्सेज पारा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तीन ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 तहत कार्रवाई बिना फर्क के जारी रखने जो सब। तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फैदान चयो तो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के दिफाई मुआहदे जो हदफ ईरान न है, ही नेटो मुआहदे जड़ो है। जेस तई मेंबर मुल्क ते हमलो न थींदो, ईरान समेत कें भी मुल्क खिलाफ कार्रवाई न थींदी। नेटो मुआहदे की शिक 5 तहत मक्का मुआहदे में एक बे की दिफा की जमानत डिनी वही। नेटो जी टई मुल्क एक वजारती कमेटी कायम कंदा, जैसे सेक्रेटरिएट सऊदी अरब में हों। टेक्निकल मामला हल थे बाद मिस्र भी दिफाई मुआहदे में शामिल थी सके। पाकिस्तान खिते में अमुन ए तहफुज जो जामिन है, पेट्रोलियम बारे वजीर अली परवेज मलिक चयो तो मक्का गदल दिफाई मुआहदो पाकिस्तान लाए फखुर जड़ी गाल है। पाकिस्तान की हथियारबंद फौज की महारतुन की दुनिया शाहिद है, पाकिस्तान मौशी मैदान में भी कामयाबी हासिल कंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया, जैसे मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: खुशखबरी साहिब डे शफा मियाँ मरीजन के सेहत अवाजी हिफाजत असाजी सखर ए हैदराबाद जो मशहूर ए मारूफ इस्लामाबाद जो डिग्री याफ्ता होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद राशिद DHMS RHMP हाँ अवाजे पेंजे शहर लाड़कानी में मरीजन जो मायनो इलाज करे रहो आहे। असा वट हर नंढी ए पुरानी बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन इलाज कयो वने थो, जैमे पथरी, मोका, फॉलेज, कुन रग ए जोड़न जो सूर, मादे जा मसाला, शुगर, ब्लड प्रेशर, जनाना ए मर्दाना बीमार जो इलाज कयो वने थो। जनाना चकास लाए लेडी असिस्टेंट जी सहूलत मौजूद आहे। एड्रेस पुरानी कराची होम्योपैथिक क्लिनिक सामू सलाम मेडिकल सेंटर, लग हमीद कंठन वारो, बाकरानी रोड, लाड़कानो। टाइम रोजाना सुबह जो 9 बजे का शाम जो 5 बजे ताई। नोट जुमे जी दी क्लिनिक बन...

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद नारा।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज,
2: अजूमर
1: FM 88
2: बाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Apna Shehar, Apna Ghar, Mathiyari. Aur Mathiyari ki Awaaz.
4: GFM 91.6.
5: मैं संबंधी जो आई हूँ कमर्शियल तो सोच रही थी खत्म होगा, खत्म ना लंबा जला हो गई ओरी तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी तो बिल्कुल लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बहुत सारे आपके पास जो है ना वो वजूहात मौजूद होंगी। ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से सबसे पहले जो है ना ये बात आप सुन ले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है ना इसका मतलब ये होता है और मक्स लोगों को आदत भी की जाए चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंस भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं और प्रोडक्ट ना लगाने की वजह से उनकी स्किन जाहिर सी बात है वो खराब हो जाती है। तो उस खराब स्किन को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए और अपने खूबसूरत से चेहरे को हमेशा खूबसूरत रखने के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम फॉर्मुलेशन है ग्लूटाथायोन ब्यूटी क्रीम इन चीजों को होगा कि हमारी स्किन क्या जरूरी है। तो बिल्कुल जरूरी है आपकी स्किन के अंदर स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत डी स्किन ब्यूटी क्रीम आदत और हिफाजत भी होती है।

वालेकुम अस्सलाम। और ये मौजूद है सलाम भाजी सदरा जुल्कनेन खोड़ो हमारे साथ इकराम आकिल कहते हैं दर खड़कियो बाहर निकतम तो हमरा बाहर बीठो हो पुठो मास बुधाए पुठो मास केर बा बुधाए वयो मुझो नालो आचर तई मना ये खबर पे अव सही सही सही।

भक्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं किशोर भाई के अज मुझो खंड जो जहाज त कोन बुडो आ पर तबे जो जहाज बुडी वयो आहे संडे तवा जो मतलब ज्ञान थी वयो आईली दुख थियो जदी कहती है उसको बोलो नाराज ही रहो क्योंकि तुम वैसे किसी को नहीं मनाते हकीकत तवाला जो नाराज थी उनका उल्टो नाराज थी वेंदी है वही मनायो हाने अच्छा ये स्मार्टू गोपांग हमारे साथ कहते हैं वाह वाह जबरदस्त सॉन्ग थैंक यू कहते अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे हैं और कहते सिद्रा हाँ जी

हाओ हकीकत अथव बस हाँ तुम पा सुणा थी वो नी तुम पा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सोना थी वो कें भी लिफ्ट न कराज अल्लाह और चाचा खालिद कहती आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है पब्लिक को मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो जाए। अच्छा अली मुर्तजा आ चुके हैं कि सलाम हाउज यू मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं और कहाँ गुमसुम हैं। मोहम्मद वीरन जखरानी हमें सुन रहे हैं जेकब आबासी भाईजान आपको वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते हैं पे जखे डॉक्टर डा वठी वनो पे जखे या तवांगे। अशफा कहते हैं डिंगो आ गोट तुंजो डिंगिया जात प्यारा माय फेवरेट सॉन्ग अल्लाह जाय बुदा। अच्छा स्मार्टो को पा कहते हैं टॉपिक संडे का नाम किसी एक दिन देखकर डिसाइड नहीं हुआ था लोगों ने वक्त को दिनों के साइकिल में डिवाइड किया और 7 दिन का वीक बनाया और इन 7 दिनों को अलग अलग नाम दिए गए इसीलिए जब पहला संडे आया लोगों को पहले से पता था कि ये 7 डे साइकिल का संडे वाला डे है। ओके सही सही।

सिद्धी ख़बर अच्छा जाम ताले बस सोलंगी बोरो खां से सगड माजो दान अद्दी तमागे शमन चुकानो बिल्कुल बुधराईनी ता पाने सीट ते बैठा हो जो अली मुर्तजा के ते कैफ हालू किया हबीबी अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी गाना सुनाते हैं आपको हबीबी सब्र कीजिए हबीबी अच्छा सादिया कहती है आपका शो बड़ा जबरदस्त है आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए सादिया बताएं तो पता तो चले ये जो तुम्हारे खूबसूरती जो राज आखिर केड़ो राज शहबाज में सुन रहे हैं शहबाज हेलो मारे चले ओके हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे आज मेरे पास मेरा दोस्त मुजम्मिल भी आपका शो सुन रहा है और आपको सलाम दे रहा है शहबाज भी ओके शहबाज को मुजम्मिल को और आप तीनों को वेलकम कहा जाता है और प्यारी मोमना कहती है शो नाइस है फुल फन थैंक यू वेरी मच प्यारी मोमना अच्छा हैप्पी कहती है आरजे करूंगी वसीम अब्बास उनारी शहदादपुर अच्छा हिदायत लगे थे फकीर ने बोला 10 रुपए का सवाल सही हाँ जी चाहता चो ओके जी बिल्कुल प्रोग्राम तमाम बुधंदा रहो टाइम थी वाइज शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वहां जो थे बैठा हो जो मोटू था दोस्तों वाइज शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हनो जी

0: इट्स टूथ।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
0: इट्स 2:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में। डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट।

ओके जी बिल्कुल प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एच एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एच ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सावन से आप हमारे साथ मौजूद है जनाब आपको वेलकम कहा जाता है और इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया और हमारे साथ ही जी वरियाम अली क्या कहते हैं सदरा हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड सलाम हो दिल से आपको वालेकुम असलाम हो आपको भी थैंक यू आप हमारे साथ हैं

हा साईं, ॻाल्हि त ॾाढी भली आहे, पर तव्हांखे छा करणो, तव्हांखे टी स्किन प्यूरी क्रीम जो इस्तेमालु करणो। अच्छा लुबना हमारे साथ, लुबना कहती है, अच्छा लुबना ने शायरी भेजी है।

वाह सही वाह, वाह सही वाह, ॾाढो ख़ूबसूरत गानो। हुन सां गॾोगॾु अच्छा लुबना की शायरी पढ़ रहे थे। लुबना, तेरी याद जो हमें एक अलग दुनिया बसा रखी है, हमको मालूम नहीं चाहत के तकाजे, लेकिन तेरी बातों के सिवा हर बात भुला रखी है।

अच्छा पता नहीं क्यों ये गाना सुन रही थी तो मुझे दिया की याद आ गई. हाँ जी बहुत अच्छी लड़की ये माशाल्लाह. और चोरी चोरी हमारा शो भी सुनती है. अच्छा ना खाना दर्दी दिल कहती है वेरी नाइस सॉन्ग थैंक यू. अच्छा वासु भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. निदली कहती लास्ट में कोई ओएसटी प्ले करना टाइम मिले तो जो हम दोनों का फेवरेट हो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे ठीक है. और हैप्पी कहती है आज भाई शाम वाले प्रोग्राम में मिलते हैं जी जी इंशाल्लाह. दर्द दिल कहती है दिल कर रहा है चंदा बोलती जाए हम सुनते रहे बस. अल्लाह मत बेचारे होने तो कसम.

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय किया हमने। ये वाला गाना हमारे लिस्ट में मौजूद है, जो कि मैं सोच रही हूँ इस गाने को हम डेडिकेट करेंगे चाचा को। वैसे चाचा

मुजाहिद मरी के हमें सुन रहे हैं, मुजाहिद मरी कराची से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम कहा जाता है। और नदली कहती है क्या मस्त जिंदगी बर्बाद हो रही है, हाय हाय। मामा समान भाई कहते हैं सोरी बुआ जी बस मसरूफियात है। चलें कोई बात नहीं, आप इजी होकर आराम से फ्री होकर हमारे प्रोग्राम में आ जाइएगा। सादिया थैंक यू सो मच, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया। हेपी आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आया। अच्छा मायरा भी हमारा शो सुन रही है, मायरा आपको भी वेलकम।

वाकई कुछ माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी नाराज़गी बि सुठी लॻंदी आहे. वैसे ई जंहिंखे दिलि सां मोहबत कई वञे, जंहिंखे दिलि सां चाह ॾिनो वञे, एतराम ॾिनो वञे, प्यार ॾिनो वञे, त उन जी नाराज़गी बि सुठी लॻंदी आहे. सो बिल्कुलु तव्हां हांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करे सघे. अली कहते हैं, अली मुर्तज़ा कहते हैं कि चुड़ेलो को आना मना है, वे चुड़ेल कल आई थी. और लुबना कहती है, हाय क्या सॉन्ग प्ले किया, अच्छा लगाना है. बिल्कुल जी, आज मैंने थोड़ी सी अपनी मनमानी कर ली, मैंने आज अपनी पसंद के गाने लगा लिए हैं. भाई गाल तो वैसे दीदी, सो सबनी की प्लेलिस्ट बनी आ है, तमा जा भी कुछ गाना हुंदा, पर तकरीबन मा कोशिश करम तो ताकी सुठी सुठी प्लेलिस्ट बुधाई वने. सो बिल्कुल प्रोग्राम जो टाइम थियो आ खत्म, तमा का मटुंदा इजाजत, वरी मुलाकात तमा से थी भाई मुंजी 5 बजे वाली प्रोग्राम में. सो तमा जॉइन करना लाजमी, आई पंजो ओ इनो सारो ख्याल रखना, किते का गलती थी हुजे तो माजरत कयूं था, के जो फीडबैक रहजी वयो आए, के जो गानड़ो रहजी वयो, त सबनी का माजरत कयूं था. So, Moklani Nahi Babu Sin Salamat Sa Salamat Allah Hafiz. Bye-bye. Love you all. And

0: نورو نوش. अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 3 p.m. This anjek is brought to you by
0: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
1: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
0: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Urea Granular. Mitti.
6: Election winning agenda.
7: सफारतकारी अमेरिका के ईरान से मफाहमत मजबूर कर मुआदे पहुंचने लाए हाने सुठो वक्त है ईरानी सदर मसूद पश

0: ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जे फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवणु आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची चयो त असां जे पंहिंजे शहीदनि जो रत नज़रअंदाज़ न कंदासीं, कातिल खे माफ़ न कबो। सऊदीअ में आरामको ऑयल रिफाइनरी ते हमले जी ज़िमेवारी यमन जे हूसी ग्रुप क़बूले वरिती। हूसी ग्रुप जो चवण आहे त सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में आरामको रिफाइनरी खे ड्रोन हमले सां निशानो बणायो वियो। हमलो सहदा ऐं हजा सूबनि में फिज़ाई हदुनि जी भञकड़ियुनि जे जवाब में कयो वियो। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जो इम्कान। अॼु पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मथां इलाइक़नि ऐं कश्मीर जे कुझु इलाइक़नि में बरसात पइजी सघे थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क जे वॾनि दरियाहनि में पाणी जे वहिकिरे में वाधि जो इम्कान ज़ाहिर कयो। बारडन जी अगवा ऐं पाणीकोट ख़िलाफ़ मेहड़ में अवामी पोरे तहरीक जी इहतिजाजी रैली, धरणो, कारकुननि घंटाघर चौक ते प्यादल मार्च करे धरणो हयो। अगवाणनि जो चवण हो त सिंधुअ ते किनारा ॾियण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। सिंध में बारडन जी अगवा जे वधंदड़ वाकियनि जो नोटिस वरितो वञे। गढ़ी यासीन में आसिफ पठाण जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ शहर में शटरबंद हड़ताल, धरणो। शहरी समाज जे इतिहाद ऐं मेहरान शॉपकीपर्स जे सर ते ॾखण नाके खां रैली कढी वई। मुज़ाहिरनि पारां अॻूणे एस एच ओ हिदायतुल्ला निंदवाणी ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी। इंडस हाईवे ते ओवरहेड साइन बोर्ड हादसनि जो सबब बणियल। मंज़ूराबाद में रहवासियुनि जो धरणो। ॻोठाणनि इंडस हाईवे ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। ट्रैफ़िक मुअतल। रहवासियुनि जो चवण हो त ओवरहेड साइन बोर्ड मौत जो राकास बणियल आहे। गाॾियुनि जे छितनि ते वेठल मुसाफ़िर फौत थी वञनि था। 3 महीननि दौरान 3 मुसाफ़िर फौत थी विया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
4: वादी मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो ले।

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया बाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit, Bank Al Habib, Rishto Bharose Jo.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
3: हाँ अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मक्का गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदे जो मक़सद कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न पर क़ौमी सलामती जे चैलेंजेस खे मुंहुं डि॒यण स्ट्रेटेजिक सहकार मज़बूत करण ख़िते में अमन इस्तेकाम ऐं खु़शहाली खे हथी वठाइण आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं परडे॒ही वज़ीर सागदार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमन ऐं तरक़ी जो ख़्वाहिशमंद आहे। मक्का मुआहिदो मुकमल दिफ़ाई मुआहिदो आहे। कंहिं बि मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन रतुल फितना 3 जारी। कार्रवाई में 15 ख़ारजी मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज पस्तून बोलान वाशिक अवरान सिबी खुज़दार हरनाई ऐं नौशकी में कार्रवाईअ दौरान 15 दहशतगर्द मारिजी विया। कब्ज़े मां हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ। सिक्योरिटी फोर्सेज पारां दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन रतुल फितना 3 तहत कार्रवाईयूं बिना फ़र्क़ जे जारी रखण जो अज़म। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेज खे भेटा पेश। मुल्क में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ दहशतगर्दी खे पाणा पटण वारे अज़म जो बि इज़हार। तेहरान जा 6 मुतालबा तस्लीम थियण ताईं अपना हुर्मुज़ न खुलंदो। ईरान जी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी सेक्रेटरी जनरल वाकर ज़ुल्क़दर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण, ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तम करण, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करण शामिल आहे। सिफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मुफ़ाहमत ते मजबूर कयो। मुआहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सदर जे तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसूद पेशिकियान चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश नामे तहत अमरीका खे आबना हरमुस बाबति ईरान ऐं उमान जी गडि॒यल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे। भदकड़ीअ जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रद अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईरानियुनि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे। दुहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवैयो तब्दील न थियो आहे। ईरान बि तयारु आहे। ईरान में जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जे फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जी सरबराह जो चवण आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग बासराक जी चयो कातिल खे माफ़

0: Want beautiful, vibrant hair color? Presented. The new Revlon Color and Care Nourishing Permanent Hair Color that gives great coverage with no ammonia, which gives up to 8 weeks of beautiful color with a blend of 4 natural oils and shea butter. For intense.
1: इलाकन में कश्मीर के कुछ इलाकन में बरसात पैजी सके थी. नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क के वन दरियान में पानी के वहकरे में वाद जो इम्कान जाहिर कर छोड़ो.
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GAFM 88 नेटवर्क.
3: सिंध की आवाज.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में. एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर. जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शा यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए.
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे

0: बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरी ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 7 PM. This time check is brought to you by
0: Fakiri Dex Ointment.
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

यूनियन खे चयो अहिड़ो मनसूबो ठाहियो जंहिंमें 21 ॾींहनि दौरान हथियारनि जी पैदावार में तमामु घणो इज़ाफ़ो करे सघिजे। जेडीवेल चयो त छिकताण अञा मुकमल तौर ख़तम न थी आहे, अमरीका सिफारती, माशी ऐं फ़ौजी ज़रिया इस्तेमाल करे रहियो आहे।

पढ़ाई वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ॻाल्हियूं कराईंदड़नि तरफ़ां पैगामनि जी ॾे वठि जो सिलसिलो जारी आहे। हिन खे ॻाल्हियूं नथो चई सघिजे। आपना हुरमुस जे मौजूदा सूरत हाल

0: हींअर ताईं पंहिंजे मोकल असां संभाल करण ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तम करण पाबंदियुनि में नरमी जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करण शामिल आहे। सिफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मुफ़ामत ते मजबूर कयो। माइटे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सतह जे तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस मसूद पेशिकियान चयो इस्लामाबाद मुफ़ामत खे अपनाए हुनमत बाबति ईरान ऐं ओमान जी गडि॒यल गाइड लाइन्स ते अमल करणु घुर्जे। हा वजगड़ी जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रते अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईरानियुनि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे। दुहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवैयो तब्दील न थियो आहे। ईरान बि तयार आहे। ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जी फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवण आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त असां जे पंहिंजे शहीदनि जो रत नज़रअंदाज न कंदासीं। कातिल खे माफ़ न कबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 7:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: सुबह की चाय।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वाले

0: के हालात। जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप। आहियां गुलाब सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा। चीन पारां सिंध के लेडी हेल्थ वर्करन जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फैसलो। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील। मेराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। निसार खेड़ो ऐं रेवेन्यू ऑफिसरन मथां मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार जा इल्ज़ाम। जांच जो हुकुम। तालीम खाते पारां सरकारी स्कूलन जो नओ टाइम टेबल मुकरर। सुबुह 8 खां 2:30 बजे मंझंदि ताईं स्कूल खुलियल रहंदा। पुरन जे रूहानी पेशवा पीर साहब पागार चूंड कौमी नौजवान सां मोबाइल सां ज़ियाती कंदड़ पंजनि जवाबदारनि जा हथ बंदि करे छॾिया। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा। सिंध कराची ऐं नवनि सूबनि जो सवाल। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील। एराज़ीअ जो तइन मार्केट अघनि सां लाज़मी करार। 5 लख टन परडे॒ही कणक ख़रीदारी जी मंज़ूरी। मेराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। उन ॾिस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जे सदारत में थियल काबीना इजलास में सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 ते गौर वीचार कयो। जंहिं जो मक़सदु सदी पुराणो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 खे सूबे में सरकारी ज़मीन जे इंतज़ाम अलाइनमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ जदीद ऐं शफ़ाफ़ कानूनी फ्रेमवर्क सां तब्दील करणु आहे। तजवीज़ कयल कानून साज़ी मार्केट ते ॿधल वैल्यूएशन शफ़ाफ़ अवामी नीलामीअ जो तरीक़ो अलाटमेंट लाइ वाज़े क़ाबिलियत जा मयार सख़्त इंतज़ामी शिकूं ऐं शिकायतुनि जे अज़ाले जो हिकु मौसर निज़ाम मुतारिफ़ कराए ज़मीनुनि जे गवर्नेंस में वॾे अरसे खां ईंदड़ मसइलनि खे हल करणु चाहे थी। नओं फ्रेमवर्क ज़रई ज़मीन सां गॾु सनअती रिहायशी वापारी अवामी मक़सदनि ऐं एम्यूनिटी मनसूबनि जी ज़रूरतुनि खे बि पूरो कंदो। काबीना नवाब शाह राणीपुर मेराण हाईवे जे 35 किलोमीटर रोड ते टूल टैक्स लागू करण जी मंज़ूरी ॾिनी। इजलास खे ॿुधायो वियो त हीउ हाईवे शहीद बिनजराबाद नौशरफ़िरोज़ ऐं शेरपुर ज़िलनि खे पाण में मिलाए थी। 41 अरब रुपयनि जी लागत सां रोड खे डबल कयो पियो वञे। उन ई रोड ते रोज़ानो 22,000 खां वधीक गाॾियूं गुज़रनि थियूं। तजवीज़ कयल टोलिंग सिस्टम

दरा कोऑर्डिनेटे कैल फ्रेमवर्क तहत टीसीपी जरिए 5 लख टन कणक की दरामद की मंजूरी दिनी। काबीना एक्साइज खाते की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन टैक्स इंश्योरेंस निजाम में सुधारन जो तजवीजों मंजूर कर वरतियों। ऑफ बोर्ड तबाह थियल गाड़ियों की डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी की मंजूरी इस्तेमाल न थियण जोगियो या सिस्टम में खारिज थियल गाड़ियों जहा मालिक 30 सेप्टेम्बर तीन लिखित में पधराई जमा कराने जहा पाबंद हूं। जुलाई 2010 का टैक्स अदा न करण ए पधराई जमा न कराने वाले गाड़ियों के ऑफ रोड तस्वर किया वो रहतू अदा न करण सबब 60 दिन बाद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कई वी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन निजाम के शफाफ ए सरायतो बनाने की भी मंजूरी मोटर डीलर्स वी रखने मुद्दों 12 महीने का न हों। चीन पारा सिंध के लेडी हेल्थ वर्करन के लिए 2000 घर ठाए दियण जो फैसलो सेहत वाले वफाकी वजारत पारा ट्रांसपोर्ट ए मरम्मती खर्च खण के सूरत में घर जो अंग वधाए 40-19 करने की आछ। उन समय सेहत वाले वफाकी वजारत चीन तरफा बोर मुतासर की बहाली के लिए नल ग्रांट में लेडी हेल्थ वर्करन लाए प्री फेब्रिकेटेड घरन की तामीर वाले मनसूबे जो जायजो वरतो है। रिथा मूजिब शुरुआती तौर 3000 घर तामीर कया वा जफाकी वजारत सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट।

अरब 80 करोड़ रुपया आरएमबी लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ घरनि जे तामीर लाइ मुख़्तस कई वई आहे। चीज ॾिनी आहे त हू प्री फेब्रिकेटेड घरनि में ॿ कमरा हूंदा, जिन मां हिकु कमरो क्लीनिक या तिबी ख़िदमत छह

दरख़्वास्त गुज़ार क़ुर्बान अली अब्बासी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त निसार खोड़ो जी हिदायत ते अॻूणे एडिशनल कमिश्नर, अॻूणे असिस्टेंट कमिश्नर, अॻूणे मुख़्तियारकार ऐं ॿियनि लाॻापियल आफ़ीसरनि मुबैना तौर मिल्कियत जे सरकारी रिकार्ड में फेरफार करे गैर क़ानूनी क़दम खया। दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई आहे त सिंध हाई कोर्ट पारां रिकार्ड में मुबैना फेरफार रोकण बाबति जारी कयल हुकमनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर रिकार्ड में फेरफार कंदड़ ज़िमेवारनि माण्हुनि ख़िलाफ़ कानून मूजिब कार्रवाई करे। अदालत पंहिंजे हुकुम में करार ॾिनो आहे त इल्ज़ाम जी हक़ीक़त मालूम करण जे लाइ मुकमल जांच ज़रूरी आहे, जंहिंखां पोइ वधीक कार्रवाई बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। तालीम खाते सिंध सरकारी स्कूलनि जो नओं टाइम टेबल मुक़रर करे छॾियो आहे। जारी कयल सर्कुलर मूजिब 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं प्राइमरी स्कूल सूमर खां ख़मीस ताईं सुबुह 8 खां 2:30 ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल जुमे ॾींहुं सुबुह जो 8 खां 1 वॻे ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबुह 8:30 खां 3:30 वॻे ताईं हलंदा। अहिड़ी तरह प्राइमरी डबल शिफ्ट स्कूलनि जो बि शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। सर्कुलर मूजिब त डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी स्कूलनि जी पहिरीं शिफ्ट 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं सुबुह 7:30 खां 1:30 वॻे ताईं हलाई वेंदी, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं डबल शिफ्ट एलिमेंट्री ऐं हायर सेकेंडरी सुबुह जी शिफ्ट 8 खां 1:30 ताईं हूंदी। चूंडकोमी नौजवान आशिक चांडियो सां मुबैना ज्यादती, तशदुद ऐं वीडियो वायरल करण वारे मामले बाद पीर साहब पागारे वाक़े जो नोटिस वठंदे इल्ज़ाम हेठि आयल नियाज़ आरादी, इम्तियाज़ आरादी, अली नवाज़ आरादी, मीर हसन आरादी ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा आरादीअ जो हथ बंदि करे छॾियो। पुलिस नामज़द जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ वॾी नफ़रीअ सां छापा हणी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं कयूं, जॾहिं त जवाबदार जे भाउ अली गुलाब आराई, हाई हाजन आरादीअ समेत 5 ते सरकार पारां ड्यूटी अटका पुलिस मथां हमले जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। होॾां फिरियादी अज़ीम चांडियो इंसाफ़ जो मुतालबो कंदे चयो आहे त वाकिअ में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿिए तरफ़ नामज़द जवाबदार नियाज़ आरादी क़ुर पाक हथ में खणी पंहिंजी बेगुनाही जो इज़हार कंदे सभई इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया आहिनि। SHO सोरा यासिर खोसो राब्ते ते ॿुधायो त जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रहिया आहियूं, रियायत न थींदी।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधुदुर्ग पाकिस्तान के नक्शे से एक सूबो न पर पांजे हजारे सालन की तारीख सकाफत बोली जाग्राफी ए तहजीबी सुणप रखड़ एक तारीखी वहदत है। पाकिस्तान के क्याम की तारीख में सिंध जो किरदार भी बुनियादी अहमियत रखे तो। 1940 के करारदाद का वठी पाकिस्तान के क्याम तई सिंध की सियासी क्यादत अवाम पांजे मखसूस तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के तहरीक में हिस्सो रहा। अज जडे मुल्क में नवन सूबन के क्याम जो बहस बीहर जोर वठी रो है तदें वो सब्जामी विरासत तई महदूद न तो रहे। सिंध की अवाम लाए वो सवाल पांजी तारीखी वहदत वसीलन जाग्राफी ए मुस्तकबिल से गंढियल है। तें करे अड़ी कें भी तजवीज़ से जज्बात बदर तारीखी हकीकत आइनी उसूलन अवामी रजामंदी के बुनियाद से गौर थे घुर्जे। बदकिस्मती से सिंध में एक अरसे का वो एहसास वधी रो है तो सिंध के वसीलन जमीनुन पानी सामुंडी पट्टी ए खास तौर करे कया वन था जे एहसास पैदा फायदेमंद नी थी सके। कराची इन बहस जो सब का अहम नुक्तो है। कराची सिर्फ एक मुआशी शहर न पर सी वजूद जो हिस्सो है। सागे वक्त कराची मुख्तलिफ़ कौम बोलियन सकाफतुन से

तुरा और एवोकाडो, डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता
2: ना रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

غلام کیے بادشاہ

पेश है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधुरुगो पाकिस्तान के नक्शे से एक सूबो न पर पांजे हजारे सालन की तारीख सकाफत बोली जाग्राफी ए तहजीबी सुणप रखड़ एक तारीखी वहदत है। पाकिस्तान के क्याम की तारीख में सिंध जो किरदार भी बुनियादी अहमियत रखे तो। 1940 के करारदाद का वठी पाकिस्तान के क्याम तई सिंध के सियासी क्यादत अवाम पांजे मखसूस तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के तहरीक में हिस्सो रहा। अज जडे मुल्क में नवन सूबन के क्याम जो बहस बीहर जोर वठी रो है तदे वो सवाल सिर्फ इंतजामी विरासत तई महदूद न तो रहे। सिंध की अवाम लाए वो सवाल पांजी तारीखी वहदत वसीलन जाग्राफी ए मुस्तकबिल सा गंढियल है। तें करे अड़ी कें भी तजवीज ते जज्बात बदरा तारीखी हकीकतुन आइनी उसूलन अवामी रजामंदी के बुनियाद ते गौर थियण घुर्जे। बदकिस्मती से सिंध में एक अरसे का वो एहसास वधी रो है तो सिंध के वसीलन जमीनुन पानी सामुंडी पट्टी ए खास तौर कराची बाबत फैसला सिंध की अवाम के ख्वाहिश के नजरअंदाज कर कया वन था। जैसे कें सूबे की अवाम में मुसलसल उहो एहसास पैदा थे तो संदन आवाज नथो बुधो वे तो उ सूरत हाल कें भी वफाक लाए फायदेमंद नथी थी सके। कराची इन बहस जो सब का अहम नुक्तो है। कराची सिर्फ एक मुआशी शहर न पर सिंध के तारीखी ए जाग्राफियाई वजूद जो हिस्सो है। सागे वक्त कराची मुख्तलिफ कौमन बोलियन सकाफतुन से ताल्लुक रखड़ लखे मान जो शहर पिण है। सिंधी उर्दू गलड़ बलोच पख्तून पंजाबी बेन बिरादरीन कराची की तामीर तरक्की मीपा जो किरदार अदा किया है। तें करे कराची के कें एक लासानी गुरोह के मिल्कियत करार दियण तारीखी ए समाजी हकीकतुन के महदूद करण बराबर होंद। वो भी हकीकत है त सिंध के बिन वन शहर में मुख्तलिफ बिरादरन जहा मू गा वक्त से गड शहरी आबादी वधी है। नव आबादियों वजूद में आयु आन मुख्तलिफ बोलियों गलड़ मू एक बे में जजब पिण थे। दुनिया के बिन शहर वागुर कराची में भी शहरी आबादी की तब्दीली एक फितरी अमल है। उन तब्दीली के लासानी खौफ या सियासी तकरार के सबब बनाने बदरा हकीकत पसंद अंदाज से समझण की जरूरत है। सागे वक्त सिंध के सियासी ए समाजी क्यादत की जिम्मेवारी भी तमाम वही है। रुगो एहतजाज या बयानबाजी काफी ना है। सिंध के मुख्तलिफ सियासी समाजी दानश्वर कॉम्परस दुरीन के इख्तिलाफन का मथाउं थी एक वाजे जमहूरी पुरमन हिकमत अमली जोड़ घुर्जे। बे तरफ उर्दू गलड़ सिंधियों समेत कराची के समूरन बिरादरन के भी समझण घुर्जे तो सिंध की वहदत कें एक बिरादरी खिलाफ मनसूबो ना है। सिंधी तारीख ए मुस्तकबिल में हर

उन शहरीअ जो हिसो आहे जेको हिन धरतीअ खे पंहिंजो घर समझे थो। अॼु ज़रूरत हुन ॻाल्हि जी आहे त सिंध बाबति थींदड़ हर फ़ैसिले में सिंध जी आवाम जी राय, आइनी हक़नि ऐं तारीख़ी हैसियतुनि खे नज़र में रखियो वञे। नवनि सूबनि जो सवाल हुजे या कराची जो मुस्तक़बिल, अहिड़ा फ़ैसिला कंहिं बंदि कमरे में न पर अवामी रज़ामंदी, आइनी अमल ऐं जमहूरी उसूलनि तहत थियणु घुर्जनि।

0: इहो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: इट्स 9:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज माइक्रोबीज की जल्द को बनाए और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क फिर असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Sindh se judi hafte bhar ki khabrein, taqreebat ka haal, masail ki surat-e-haal, Sindh ke rehne walon ke khayalat. Janiye ye sab Sindh Roundup mein. Sindh Roundup har itwar ki shab 8 baje sirf GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
6: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे माया गुलाब खान बेण।

सिंधी राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा चीन पारां सिंध के लेडी हेल्थ वर्करन जे लाए 2000 घर ठाहे देण जो फैसलो। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील, मेराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। निसार खेड़ो ऐं रेवेन्यू ऑफिसरन मथां मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार जा इल्ज़ाम, जांच जो हुकुम। तालीम खाते पारां सरकारी स्कूलन जो नओं टाइम टेबल मुकरर, सुबुह 8 खां 2:30 बजे मंझंदि ताईं स्कूल खुलियल रहंदा। पुरन जे रूहानी पेशवा पीर साहब पागार चूंडको में नौजवान सां मुबैना ज्याती कंदड़ पंजन जवाबदारन जा हथ बंद करे छड़िया। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा, सिंध कराची ऐं नवन सूबन जो सवाल। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील, एराजी जो तईन मार्केट अघन सां लाज़मी करार। 5 लख टन परडेही कणक खरीदारी जी मंजूरी, मेहराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। उन ॾस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जे सदारत में थियल काबीना इजलास में सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 ते गौर वीचार कयो, जंहिंजो मक़सद सदी पुराणो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 खे सूबे में सरकारी ज़मीन जे इंतज़ाम, अलाइनमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ जदीद ऐं शफ़ाफ़ कानूनी फ्रेमवर्क सां तब्दील करण आहे। तजवीज़ कयल कानून साज़ी मार्केट ते ॿधल वैल्यूएशन शफाफ़ अवामी नीलामी जो तरीक़ो, अलाटमेंट लाइ वाज़े काबिलियत जा मयार, सख़्त इंतज़ामी शिकूं ऐं शिकायतुनि जे अज़ाले जो हिकु मौसर निज़ाम मुतारिफ़ कराए ज़मीनुनि जे गवर्नेंस में वॾे अरसे खां ईंदड़ मसलनि खे हल करणु चाहे थी। नओं फ्रेमवर्क ज़रई ज़मीन सां गॾु सनअती, रिहायशी, वापारी, अवामी मक़सदनि ऐं एम्यूनिटी मनसूबनि जी ज़रूरतुनि खे बि पूरो कंदो। काबीना नवाब शाह राणीपुर मेहराण हाईवे जे 35 किलोमीटर रोड ते टूल टैक्स लागू करण जी मंज़ूरी ॾिनी। इजलास खे ॿुधायो वियो त हीउ हाईवे शहीद बेनज़ीराबाद, नौशरफ़ीरोज़ ऐं शेरपुर ज़िलनि खे पाण में मिलाए थी। 41 अरब रुपयनि जी लागत सां रोड खे डबल कयो पियो वञे। उन ई रोड ते रोज़ानो 22,000 खां वधीक गाॾियूं गुज़रनि थियूं। तजवीज़ कयल टूलिंग सिस्टम मां लगभग 2.14 अरब रुपया सालियानी आमदनी थियण जो इम्कान आहे। काबीना सूबे जे खुराक जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जे लाइ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ज़रिए 5 लख टन कणक दरामद करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में कणक जी कुल दस्तियाबी 4.84 ऐं सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे। लगभग 1.69 मिलियन टन खोट जो इम्कान आहे। गौर वीचार खां पोइ काबीना वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कोआर्डिनेट कयल फ्रेमवर्क तहत TCP ज़रिए 5 लख टन कणक जी दरामद जी मंज़ूरी ॾिनी। काबीना एक्साइज़ खाते जी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन टैक्स ऐं इंश्योरेंस निज़ाम में सुधारनि जूं तजवीज़ूं मंज़ूर करे वरितियूं। ऑफ बोर्ड ऐं तबाह थियल गाॾियुनि जी डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसीअ जी मंज़ूरी, इस्तेमाल न थियण जोगियो या सिस्टम मां ख़ारिज थियल गाॾियुनि जा मालिक 30 सेप्टेम्बर ताईं लिखत में पधराई जमा कराइण जा पाबंद हूंदा। जुलाई 2010 खां टैक्स अदा न करण ऐं पधराई जमा न कराइण वारनि गाॾियुनि खे ऑफ रोड तसवर कयो वेंदो। रहतूं अदा न करण सबबि 60 ॾींहनि बाद गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन रद्द कई वेंदी। गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम खे वधीक शफ़ाफ़ ऐं सराइतो बनाइण जी बि मंज़ूरी। मोटर डीलर्स वटि रखण जो मुदो 12 महीननि खां वधीक न हूंदो। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत पारां ट्रांसपोर्ट ऐं मरमती ख़र्च खणण जे सूरत में घरनि जो अंग वधाए 40-19 करण जी आछ। उन ॾस में सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत चीन तरफ़ां बोर मुतासिरनि जी बहालीअ जे लाइ ॾिनल ग्रांट मां लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ प्री फेब्रिकेटेड घरनि जी तामीर वारे मनसूबे जो जाइज़ो वरितो आहे। रिथा मूजिबि शुरूआती तौर 3000 घर तामीर कया वेंदा। जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ारत ऐं सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट ऐं अदावती ख़र्च बर्दाश्त कया त उन्हनि घरनि जो अंग वधी 6000 ताईं पहुची सघे थो। सिंध सूबे खे 4019 घर मिलण जो इम्कान आहे। दस्तावेज़ मूजिबि चीनी ग्रांट जे मजमूई रक़म 800 मिलियन RMB आहे, जंहिं मां 300 मिलियन 11.80 अरब रुपया RMB लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ घरनि जे तामीर लाइ मुख़्तस कई वई आहे। चीनी वफ़द तजवीज़ ॾिनी आहे त हू प्री फेब्रिकेटेड घरनि में 2 कमरा हूंदा, जिन मां हिकु कमरो क्लीनिक या तिबी ख़िदमतुनि लाइ ऐं ॿियो रिहाइश लाइ मख़सूस हूंदो। हर घर जी वेकर 3 मीटर, ड्रेग 8 मीटर ऐं ऊचाई 2.6 मीटर हूंदी।
कुल तामीर थियल एराज़ी 24 चौरस मीटर हूंदी। घर में बिजली जी अंदरूनी वायरिंग, रोशनी, भित ते लगल पखो, बरकी साकट, प्लम्बिंग, जरूरी फर्नीचर, सोलर पावर सिस्टम, वाटर पंप ए पानी की टांकी समेत बुनियादी सहूलतूं फराहम कई वेंदियूं। उन्हनि घरनि जी उमिरि 20 साल ॿुधाई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त 300 मिलियन RMB जे बजट मां 3000 घर तामीर थींदा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वज़ीर आज़म जे हिदायत ते मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 मुल्तवी करे छॾी। पधराई में चयो वियो आहे त MD किट जी टेस्ट हाणे 16 अगस्त बदिरां 20 सेप्टेम्बर 2026 ते थींदी। तारीख़ तब्दील करण जो फ़ैसिलो इम्तिहान खे वधीक मुनज़िम, महफ़ूज़, शफ़ाफ़ ऐं उमेदवारनि जे लाइ आसान बणाइण जो मक़सद सां कयो वियो आहे। इम्तिहान जी तारीख़ खां पोइ ॿिया समूरा शर्त ऐं ज़ाब्ता बरक़रार रहंदा। लाड़काणे में एंटी करप्शन की खास अदालत पारा PP सिंध के सदर निसार करड़ो समेत बेन खिलाफ़ मिल्कियत के रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार बाबत जांच जो हुक्म। 6 हफ्तन अंदर जांच रिपोर्ट तलब। उन सिलसिले में मिलियल जान मूजिब लाड़काणे के एंटी करप्शन की खास अदालत अगूणे तालके नाज़िम कुर्बान अली अब्बासी तरफा दाखिल दरख्वास्त बुधणी कई। अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार करड़ो समेत बेन खिलाफ़ मिल्कियतुन जे सरकारी रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमाल बाबति इल्ज़ामनि ते शुरूआती जांच जो हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रीजनल डायरेक्टर खे हिदायत कई आहे त 6 हफ़्तनि अंदरि जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश कई वञे। दरख़्वास्त गुज़ार कुर्बान अली अब्बासी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त निसार खोड़ो जी हिदायत ते अॻूणे एडिशनल कमिश्नर, अॻूणे असिस्टेंट कमिश्नर, अॻूणे मुख़्तियारकार ऐं ॿियनि लाॻापियल आफ़ीसरनि मुबैना तौर मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार करे गैरक़ानूनी क़दम खयां। दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई आहे त सिंध हाई कोर्ट पारां रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार रोकण बाबति जारी कयल हुकमनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर रिकॉर्ड में फेरफार कंदड़ ज़िमेवारनि माण्हुनि ख़िलाफ़ कानून मूजिब कार्रवाई करे। अदालत पंहिंजे हुकुम में करार ॾिनो आहे त इल्ज़ाम जी हक़ीक़त मालूम करण जे लाइ मुकमल जांच ज़रूरी आहे, जंहिंखां पोइ वधीक कार्रवाई बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। तालीम खाते सिंध सरकारी स्कूलों जो नओं टाइम टेबल मुकर्रर करे छॾियो आहे। जारी कयल सर्कुलर मूजिब 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं प्राइमरी स्कूल सूमर खां खमीस ताईं सुबुह 8 खां 2:30 ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल जुमे ॾींहुं सुबुह जो 8 खां 1 वॻे ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबुह 8:30 खां 3:30 वॻे ताईं हलंदा। अहिड़ी तरह प्राइमरी डबल शिफ्ट स्कूलनि जो बि शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। सर्कुलर मूजिब त डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी स्कूलनि जी पहिरीं शिफ्ट 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं सुबुह 7:30 खां 1:30 वॻे ताईं हलाई वेंदी, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं डबल शिफ्ट एलिमेंट्री ऐं हायर सेकेंडरी सुबुह जी शिफ्ट 8 खां 1:30 ताईं हूंदी। चूंडकोमी नौजवान आशिक चांडियो सां मुबैना ज्यादती, तशद्दुद ऐं वीडियो वायरल करण वारे मामले बाद पीर साहब पागारे वाक़िए जो नोटिस वठंदे इल्ज़ाम हेठि आयल नियाज़ आरादी, इम्तियाज़ आरादी, अली नवाज़ आरादी, मीर हसन आरादी ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा आरादीअ जो हथ बंदि करे छॾियो। पुलिस नामज़द जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ वॾी नफ़रीअ सां छापा हणी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं कयूं, जॾहिं त जवाबदार जे भाउ अली गुलाब आराई, हाई हाजन आरादीअ समेत 5 ते सरकार पारां ड्यूटी अटका पुलिस मथां हमले जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। होॾां फिरियादी अज़ीम चांडियो इंसाफ़ जो मुतालबो कंदे चयो आहे त वाकिए में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿिए तरफ़ नामज़द जवाबदार नियाज़ आरादी क़ुर पाक हथ में खणी पंहिंजी बेगुनाही जो इज़हार कंदे सभई इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया आहिनि। SHO सोरा यासिर खोसो राब्ते ते ॿुधायो त जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रहिया आहियूं, रियायत न थींदी।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु रुगो पाकिस्तान के नक्शे से एक सूबो न पर पांजे हजारे सालन की तारीख, सकाफत, बोली, जोग्राफी ए तहजीबी सुणप रखड़ एक तारीखी वहदत है। पाकिस्तान के क्याम की तारीख में सिंध जो किरदार भी बुनियादी अहमियत रखे तो। 1940 के करारदाद का वठी पाकिस्तान के क्याम तई सिंध के सियासी क्यादत अवाम पांजे मखसूस तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के तहरीक में हिस्सो रहा। अज जडे मुल्क में नवन सूबन के क्याम जो बहस बीहर जोर वठी रो है तदे वो सवाल सिर्फ इंतजामी विरासत तई महदूद न तो रहे। सिंध की अवाम लाए वो सवाल पांजी तारीखी वहदत वसीलन जोग्राफी मुस्तकबिल से गंढियल है। तें करे अड़ी कें भी तजवीज ते जज्बात बदरा तारीखी हकीकतुन आइनी उसूलन अवामी रजामंदी के बुनियाद ते गौर थियण घुर्जे। बदकिस्मती से सिंध में एक अरसे का वो अहसास वधी रो है तो सिंध के वसीलन जमीनुन पानी सामुंडी पट्टी ए खास तौर कराची बाबत फैसला सिंध की अवाम की ख्वाहिश के नजरअंदाज कर कया वन था। जैसे कें सूबे की अवाम में मुसलसल उहो एहसास पैदा थे तो संदन आवाज न तो बुध वे तो सूरत हाल कें भी वफाक लाए फायदेमंद नी सके। कराची इन बहस जो सब का अहम नुक्तो है। कराची सिर्फ एक मुआशी शहर न पर सिंध के तारीखी ए जोग्राफियाई वजूद जो हिस्सो है। सागे वक्त कराची मुख्तलिफ कौमन बोलियन सकाफतुन से ताल्लुक रखड़ लखे मानून जो शहर पिण है। सिंधी उर्दू गलड़ बलोच पख्तून पंजाबी बेन बिरादरीन कराची के तामीर तरक्की मीपा जो किरदार अदा किया है। तें करे कराची के कें एक लासानी गुरोह के मिल्कियत करार दियण तारीखी ए समाजी हकीकतुन के महदूद करण बराबर होंद। वो भी हकीकत है त सिंध के बिन वडन शहरन में मुख्तलिफ बिरादरन जा मानू गडजी रहंदा। वक्त सा गड शहरी आबादी वधी है, नव आबादी वजूद में आयु आन मुख्तलिफ बोलियों गलाइंदड़ मानू एक बे में जज़ब पिण थिया। दुनिया के बिन शहर वागुर कराची में भी शहरी आबादी की तब्दीली एक फितरी अमल है। उन तब्दीली के लासानी खौफ या सियासी तकरार के सबब बनाने बदरा हकीकत पसंद अंदाज से समझण की जरूरत है। सागे वक्त सिंध के सियासी समाजी क्यादत की जिम्मेवारी भी तमाम वडी है। रुगो एहतजाज या बयानबाजी काफी ना है। सिंध के मुख्तलिफ सियासी समाजी दानिशवरन कॉम्प्रेस धुरन के इख्तलाफन का मथाउ थी एक वाजे जमहूरी पुरमन हिकमत अमली जोड़ घुर्जे। बे तरफ उर्दू गलाइंदड़ सिंधियन समेत कराची के समूरन बिरादरन के भी वो समझण घुर्जे तो सिंध की वहदत कें एक बिरादरी के खिलाफ मनसूबो न है। सिंधी तारीख ए मुस्तकबिल में हर उन शहरी जो हिस्सो है जो इन धरती के पांजो घर समझे तो। अज जरूरत उन गाल है तो सिंध बाबत हर फैसले में सिंध की अवाम की राय आइनी हकन तारीखी हैसियतुन के नजर में रखियो वे। नवन सूबन जो सवाल हुए या कराची जो मुस्तकबिल अड़ा फैसला कें बंद कमरे में न पर अवामी रजामंदी आइनी अमल ए जमहूरी उसूलन तहत थियण घुर्जन।

0: इहो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
3: GAFM 91.6।